तेरे दर पर तेरा बंदा उम्मीदे करम आया, तेरे दर पर तेरा बंदा उम्मीदे करम आया। गर्चे पुर खता है, अल्लाह वी अनो वी नो वी आर फुल ऑफ सिंस, फुल ऑफ वीकनेसेस, फुल ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, वाइसेस एंड ईवल्स, पर कहाँ जाए तेरा बंदा, वे डू वी गो माई अल्लाह, वे डू वी गो, हु इज देयर फॉर अस बिसाइड्स यू, विच आर द डोर कैन वी टैप बिसाइड्स योर डोर, यू आर द ओनली वन दैट विल एक्सेप्ट डर्टी फिल्थी पीपल लाइक अस। Ey Rabbi Kareem, we are therefore turning towards you. Garche pur khata hai, par kaha jaye tera. We have come to your door, tere dar par tera banda. Your slave has come to your door. With great hope, great ummeed of forgiveness of sins. Great hope of your mercy, your kindness. गर्चे पुर खता है पर कहाँ जाए तेरा बंदा, तेरे दर पर तेरा बंदा व उम्मीद करम आया। अल्लाह।

रंग लाएंगी कब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब को जाए। सारे आलम में फिर फिर के या रब तेरा दर्द मोहब्बत सुनाए। या अल्लाह मेक यूज ऑफ अस इफ वी गो ट्रेवल इन द वर्ल्ड एंड वी लाइट अप द हार्ट्स ऑफ द पीपल विद योर मोहब्बत एंड योर लव एंड द लव ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

जिसके लिए सब कुछ है गवारा, तू ही तू, हाँ तू ही तू। ओ माय अल्लाह, मोर बिलव्ड देन माय लाइफ बी यू, तू ही तू, हाँ तू ही तू, जिसके लिए है सब कुछ गवारा। व्हाट एवर टेस्ट, ट्रायल्स, डिफिकल्टीज द पर्सन हैज टू फेस इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया, कुरान एंड सुन्ना, ही सेड आई एम प्रिपेयर्ड टू डू दैट because my Allah, you are the most beloved to me. So what a person will not do for the sake of his beloved.

कुछ न सुझाई दे मुझे हरगिज, लाख हो मंजर पेश निगाह। कुछ न सुझाई दे मुझे हरगिज, लाख हो मंजर पेश निगाह। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।